जरा टेबल पछा ने पलाज यार इधर चला ने सिमला ने मना आउट से दी विश्वास है ताजे दिखर वाटर सुबह जोड़ा

0: गर्ने छोटमा उना जोड गालु
1: दे सर अघि के चाटे म
0: कम्बु गालु नि जोबरा जुम पाउलो इन्द्र क्यु म चफन दे जेर जेर जेर बम्पु इन्द्रम दक्कन म कोइ कालिस म सक्को सागेन मुड सागेन वार्ता

और मदम माजो भर गए ममच गर्मी फार आया मिनट गर्मी दिपे मम अगर दुखा दर समाज